0: उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
1: तुझे लगे ना नजरिया

0: तो तुम क्या?
1: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
0: हाँ तो
1: मैं कुछ कह रहा था,
0: बोलो ना, भूल गए?
1: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। पेरमरन से माँ रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 61 साल के आयु में इनजस्तख यार औत माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन के बेटी अम्स्टरडम आनफील्ड रोड की रहने वाली श्रीमती श्यामला पाटन दिन की मृत्यु आएमसी हॉस्पिटल अम्स्टरडम में हो गई है। परमरन से माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 61 साल के आयु में इनजस्तख यार औत माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन के बेटी अम्स्टरडम एनफील्ड रोड की रहने वाली श्रीमती श्यामला पाटन दिन की मृत्यु अम्स्टरडम के आएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शुक्रवार की रात में 6 बजे से 7:30 बजे तक फ्रेदाफन फंसूर तथा लफ देला अवरीना के मुर्दालय होर्न बुख इन अम्स्टरडम जैतोस में। अर्थी के अंत्येष्टि क्रिया बखराफनिस घरघराना में यानी कि बसलोतन क्रिंग में आने वाले सोमवार को किए जाएंगे। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 46 64 64 06 46 64 64। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार पाटन दिन और परिवार मारापिन के दुख में शामिल है।

मौसम मस्ताना और रास्ता अनजाना। आशा जी एंड दिलराज कौर से आप सुने फिल्म का नाम सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे सत्ता, और ये है उजाला रेडियो।

और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप हरि को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबाद अर्ज की जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप हर की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। वेल, हमारे प्यारे सुनने वाले, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। उजाला रेडियो का दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक, दिन में सुबह में 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक, van maandag tot en met vrijdag, van 10 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. यहाँ का फोन का नंबर है 020-409-0807 पर आप लोग तार कर सके हैं दफ्तर के समय।

साथी उस तरह से आतिफ असलम की आवाज़ में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। हमारे प्यारे सुनवलो, हमारा वेबसाइट है www.ujala.nl पर हर जानकारी आपको मिलेगा, या तो info@ujala.nl पर आप वेबसाइट पर जाइए, जो भी जानकारी आपको हासिल करना है आपको मिल सकेगा। चलिए अब की बार प्रोग्राम में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे लता जी की आवाज़ में, मौसम है आशिकाना यार।

चंद जाने कहाँ खो गया लता एंड मोहम्मद रफी जी के आवाज में गाना जो आप लोग सुन रहे थे। चलिप की प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है करोड़ का दिल चुराने वाला हार्ट मिनिस माइटी मुकेश एंड लता जी। यू आर उजाला रेडियो।

दो दो चांद खिले अवसरों से करोड़ का दिल चुराने वाला आठ उम्मीद माइटी मुकेश एंड लता जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। हमारे प्यारे सुनने वालों, चलिए अब की बार प्रोग्राम में अनुराधा पौडवाल एंड सुरेश वारकर।

मेरे मिलन के ये रैना और इस तरह से लता एन किशोर कुमार जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे और ये हुआ रोजाना रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। मैं हूँ सुभाष, हमारे प्यारे सुनने वालों, और चलिए अब की बार यशुदास है ना शजी।

जाने मन नैन इस तरह से येसुदास एंड आशा जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे। किसी राह पर किसी मोड़ पर

कल किसी राह में किसी मोर पर अवसरों से लता और खास करके मुकेश जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। तो चलिए अब की बार हमारे प्यारे सुनने वालों लता एंड मोहम्मद रफी जी

वेल यार, मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें। अब इस तरह से मोहम्मद रफी लता जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, युवा रोजाना रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनने वालों।

आने की जब खबर महकी, बस यार तेरी खुशबू से सारा घर महके। आई सुनो से जगजीत सिंह जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, कितना मोई कितना बिसाव अल्फाज आप लोग सुने।

बीन कोटरावर तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है सुन वालों। तो डीजे आर फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खा जाए बिनकोर ट्रावर तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

अरे मेरी जान कुछ भी कीजिए पर दिल हमी को दीजिए। और आप सुने लता मंगेशकर और मुकेश जी से फिल्म छलिया का गीत उजाला रेडियो पर।

तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आप सुने, और फिल्म का नाम अप्रैल फूल।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। पेरमरन से माँ रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 61 साल के आयु में इनजस्तख यार औत माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन के बेटी अम्स्टरडम आनफील्ड रोड की रहने वाली श्रीमती श्यामला पाटन दिन की मृत्यु AMC हॉस्पिटल अम्स्टरडम में हो गई है। परमरन से माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 61 साल के आयु में इनजस्तख यार औत माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन के बेटी अम्स्टरडम एनफील्ड रोड की रहने वाली श्रीमती श्यामला पाटन दिन की मृत्यु अम्स्टरडम के AMC हॉस्पिटल में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शुक्रवार की रात में 6 बजे से 7:30 बजे तक फ्रेदाफन फंसूर तोथाल फ्त देला अवरीना के मुर्दालय होर्न बुख इन अम्स्टरडम जैतोस में। अर्थी के अंत्येष्टि क्रिया बखराफनिस घर घराना में यानी कि बसलोतन क्रिंग में आने वाले सोमवार को किए जाएंगे। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 0646-49-64-64 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार पाटन दिन और परिवार मारापिन के दुख में शामिल है।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

वेलकम है हजरत, भूल के गोले ओ बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। पेरमरन से माँ रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 61 साल के आयु में इनजस्तख यार औत माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन के बेटी अम्स्टरडम आनफील्ड रोड की रहने वाली श्रीमती श्यामला पाटन दिन की मृत्यु आएमसी हॉस्पिटल अम्स्टरडम में हो गई है। परमरन से माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 61 साल के आयु में इनजस्तख यार औत माँ व्रिनिया सरोजनी देवी पाटन दिन मारापिन के बेटी अम्स्टरडम एनफील्ड रोड की रहने वाली श्रीमती श्यामला पाटन दिन की मृत्यु अम्स्टरडम के आएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शुक्रवार की रात में 6 बजे से 7:30 बजे तक फ्रेदाफन फंसुरफ्त देला अवरीना के मुर्दालय होर्न बुख इन अम्स्टरडम जोतोस में। अर्थी के अंत्येष्टि क्रिया बखराफनिस घर घराना में यानी कि बसलोतन क्रिंग में आने वाले सोमवार को किए जाएंगे। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 0646 49 64 64 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार पाटन दिन और परिवार मारापिन के दुख में शामिल है।

ये बारिश का पानी, ये पानी के बूंदे तुझे ही तो ढूंढे. ब्यूटिफुल सॉन्ग हेलक गाना द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड द स्टेम फन एश किंग सामा में निमन मेरे दान शाशा तिरुपति. उजाला रेडियो है ये सुनो वालों, एक से एक हेलक गाना, हेलक फील गुड गाना एंड अफ टू ओक अ बीचे रोमांटिसे रुस्टिगे गाना टुसेडोर टोच. En zoals we dat altijd wel een beetje afwisselen tussen al die nieuwe nummers tussendoor, gaan we altijd eventjes terug naar de jaren 90. Ja, ik hou van de jaren 90. En ik hou vooral van de stem van Udit Narain. Daarom een mooie gana. Jana suno ham tumpe marte hai. Tumse mohabbat karte hai. Ik zou zeggen, listen and enjoy.

या ब्यूटीफुल चून आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो अमित जयराम के साथ। जहां भी हो आप वचो का नदू बेंस, जो भी आपका प्लान है, एक सौ से एंजॉय एन गनीत सामा मित मै, वॉन्ट दिस मेरा और आपका साथ। हेलिक नोस्टाल्जी, तिप तिप बरसा है पानी।

अस्ती चिलगा है, बड़ी जगह है, डू इट विद अ ट्विस्ट। गाना का नाम है हाँ मैं गलत, गलत हो जा तू भी, आजा करे गलती नहीं। यह फिल्म का नाम है लव आजकल एंड इट इज द 2020 वर्जन। Ja, het is de film met in de hoofdrol onder andere Salah Ali Khan. En in de versie van 2009, ja, daarin had haar vader de hoofdrol, Saif Ali Khan. It's Dunia Kamashur Hindustani Hit Radio. Most Must Hindustani Radio. Our station kan naam heet Ujjala Radio. Mehu Ami Jaram. En ik breng je weer even terug in de tijd naar het jaar 2007.

आठ बजकर 7 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो पर आप सभी चून किए हुए हैं और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदा पर से शुभ रात्रि आप सभी को कहते हैं अनहील खुयनावत। आज आखिरी बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, दोनदाख है, 25 तारीख जून आपका साथ देने चले आए हैं और वो भी अब से हम प्रोग्राम आराम करेंगे और आपका साथ हम देंगे रात्रि में 11 बजे तक। तो तहे दिल से स्वागत हम आप सभी को करते हैं, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। दिल की आवाज लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से फिर एक बार बनाया जा रहा है विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स और इधर उधर कुछ डर भरे नगमाएं भी होंगी। या मैं से अब कहा बोली अतिस वारम अतिस हेट पास खुतोप ड्रिंक खुद हाउ यू हाई स्कूल तू जाने तो बहुत सारे चीज आपको करना है मार नितालीम फू ये सेल्फ कह कू ना ये नास्त मैं से जो लाचार है बीमार है और अगर दूर रहता है तो दल से उप हालचाल आप जरूर से जरूर पूछ ले लेना और अगर हो सके तो कुछ मदद ये आप करें। या मैं सब मुझे वेल दो रही क्या बोली मेरे प्यारे सुनो दिल की आवाज है और हमारी ये प्रोग्राम के दौरान जब भी मैं प्रोग्राम बनाता हूं आप अवश्य व्हाट्सएप पर भी बातें कर सकते हैं। आप स्टूडियो में व्हाट्सएप करेंगे सीधे यहां आपके व्हाट्सएप आएंगे 020-363-0000 उजाला रेडियो का स्टूडियो का व्हाट्सएप का नंबर है और आपके कामों काज जैसे कि फरमाइशें है जरूरी खबरें मौत की खबरें आप किसी प्रकार का जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहोगे तो आप दफ्तर के दिन दफ्तर के वक्त दफ्तर के तार पर जरूर तार करें सोमवार से शनिवार फमान रखत साधना सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक फनफ मोरखन तीन यूर तो तीन में दफ्तर यूर आप दफ्तर को तार कर सकते हो 020-409-0807 आपकी फरमाइशें के लिए जरूरी खबरें मौत की खबरें या किसी भी प्रकार का जानकारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे मेल आप मेल करें लगातार 24 घंटे 7 दिन info@ujala.nl जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए और मेरी ये सुई सुई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए मैं करूं लाख जतन मगर ये मन मचल मचल जाए हाँ जी मचल मचल जाए। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज में ओपनिंग सिलेक्शन योगेश गौर जी का लिखा हुआ पेश करने जा रहा हूं दिल की आवाज में आपको फिर एक बार शुभ रात्रि कहते हुए एंजॉय यू आर एंजॉय दिल की आवाज एंड एंजॉय द सॉन्ग्स।

झलक गए रंग जहां पर, उलझ गए नैना अरे नैना, हाँ जी उलझ गए ये नैना, पाए नहीं मन बंजारा, कभी नहीं ये चैना रे चैना, कभी नहीं ये चैना, मेरे मन की प्यास है अधूरी और ये अधूरी प्यास मुझे भटकाए। जब भी कोई कंगना बोले पायल झनक जाए और सोई सोई मेरे दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। लाख जतन मैं करूं मगर ये मन मचल मचल ही जाए। ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनो, बहुत ही खूबसूरत शब्द है ये, अल्फाजे हैं ये योगेश गौर जी का लिखा हुआ एनोनोडर देन हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की फ्रेश आवाज में हमने आज का ओपनिंग सिलेक्शन पेश किया है। फिल्म का नाम शौकीन, मेरे प्यारे सुनो वालों शौकीन। सिर्फ 3 मिनट बहना हो चला है और वो भी 8 बजकर। पॉपुलर स्टेशन उजाला रेडियो है ये और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल की आवाज। आपका यारों का यार हूँ रतन राम दुलारे पांडे और फिर एक बार आप सभी प्रिय सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। प्यार इस हद तक बढ़ जाए कि आप दीवाना हो जाए, दीवानी हो जाए, और इस दीवानी और दीवानापन में किस हद तक आप अपना प्यार निभाओगे, चलो हम आपको सुनाते हैं इस दीवानापन का एक नगमा। समीर का लिखा हुआ मेरे प्यारे सुनने वालों और गीत बहुत रोमांटिक है और ये गीत फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी भी थे, जीता नहीं होता है लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत गीत है मेरे प्यारे सुनने वालों। महान सॉन्ग राइटर लिरिक्स और कवि समीर का लिखा हुआ गीत अलका याग्निक और विनोद राठौड़।

तूने पहली नजर में सनम मेरे दिल को चुरा ही लिया, हुई दुनिया से पराई तुझे अपना बनाया, बिना देखे तुझे अब तो ना आया या ना आएंगी करार, हर घड़ी है मुझे अब तेरा ही इंतजार, और तेरी चाहत की चांदनी मेरी आंखों में बस गई, ये खुशबू तेरे जिस्म की मेरी सांसों में बस गई, तू है मेरी आरजू तू है मेरी वफा, जिंदगी में कभी अपना होंगे हम जुदा, ऐसी दीवानगी तो मैंने देखी नहीं कभी। बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग जिसकी एक एक शब्द एक एक अल्फाज समीर की कलम से लिखा गया है। ये रोमांटिक सॉन्ग मिलकर गाए हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर, फिल्म का नाम दीवाना। मेरे प्यारे सुनो, दिल की आवाज है ये। और कल समवन स्पेशल का जन्मदिन है जो मेरे बिल्कुल दिल के करीब है, तो उनके लिए जरूर ये प्रोग्राम में, क्योंकि हम तो कल प्रोग्राम बनाएंगे नहीं, तो 9 बजे के इश्तिहारों के बाद उस समवन स्पेशल के लिए एक गीत तो बनता है। फिलहाल तो हम आपको ले चलेंगे आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग जो संगीत की देवी लता जी और मनहर उदास अपनी खूबसूरत आवाजों में गाएंगे, कि प्यार करने वाले कभी डरते तो नहीं, और अगर डर गए तो प्यार करते नहीं। ब्यूटीफुल सॉन्ग हियर ऑन यू आर दिल की आवाज में।

प्यार करने वाले कभी डरते तो नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी जो एक महान कवि है, इनका लिखा हुआ गीत हमने आप तक पेश किया है। संगीत की देवी लता जी और मनहर उदास की आवाजें, फिल्म का नाम हीरो। दिल की आवाज है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और फिर एक बार स्वागत है आप सभी का जो लोग इस वक्त काम पर है। Ik hoop dat het toch, ondanks alles daar binnen waar u bent, dat het cool is. Dil lagaakar kaam karna. Aur jo log sarak par hissa le rahe hain, samal ke. Kal ka mausam to aur bhi kharaab hongi. Code jo hai lal, code rod diya gaya hai. Aaj रात्रि को 12 बजे से कोड रोत, तो मतलब ये कि मौसम का हालात जो है एकदम खराब है। बहुत सारे स्कूल काम बने, और कहा जाता है कि अगर जरूरी नहीं तो आप घर से निकले नहीं। एम्प्रोवेर हाई स्कूल तो हो मेरे प्यारे सुनने वालों, ये जो सूरज है इनकी किरणें आपके घर में ना आए। एन दुखे राम ओप तैदंस दहित पीरियड, क्योंकि ये गर्मी हवा जो है घर को ठंडा नहीं करेंगे और गर्म करेंगे। एन होप लकेबल फैन ऑफ एयर को, पानी जरूरत है ऐस कास में, बाटली आप ढड़ दें ताकि आप लगातार पी सकते हो। तो संभाल के मेरे प्यारे सुनने वालों, और का बोली एक है बतो कुआरम, यहाँ एरको है लेकिन फिर भी हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। एक सिट फ्लक दे हनोवर स्टूडियो के जो बोले है खिड़की है, एन एक फुल होन अख्तर में इस अत लेकर कूल अट ब्लास मफाफूर खिड़कियों से, ये जो आईने हैं वहां से गर्मी है मुझे महसूस होता है। तो अगर एयरको ना हो तो आप समझ सकते हो कि स्टूडियो में कितना गर्म होंगे, और खास करके जितनी यहाँ पर रतूर भी हैं। माओ डू नोस बेस, आप उधर भी अपना बेस करें। एक रोमांटिक सॉन्ग की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, राहत इंदौरी जी का लिखा हुआ एक नगमा, द टाइगर कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, कि तू ही मेरी मंजिल तू ही मेरा रास्ता, तेरे संग जीना है अब मुझे दुनिया से है क्या वास्ता, तेरे मेरे बीच अब आए ना ये जमाना। पेश करता हूं

दिन रोशन है, रात हंसी है, आंसू क्या थे याद नहीं है, फूल खिले हैं फिर भी प्यासे, दिल की तू आया है सावन बनके। कैसे दिन थे, क्या मौसम थे, जितनी सांसें उतने गम थे, जितनी तारे आंख से टूटे, उतने खिले हैं अब गुलबुठे। अब तो मैं भूल गई हूं ये दर्द जो है पुराना। दिल है मेरा तेरा ठिकाना, सांस में आना और सांस में जाना, चाहत के सब मोती चुनकर रख लूंगा मैं अपने कदमों पर, चांद सजा के इन बालों में रंग भर दूंगा मैं तेरे इन गालों में। क्या बात है, चूम लूंगा मैं मेरे हमदम, हम तुझको चूम लेंगे मेरे हमदम, और सखम पे रख दूं प्यार का मरहम, और आपके कदमों में रखूंगा मैं ये सारा जमाना। राहत इंदौरी जी का लिखा हुआ ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मिलकर गाए द टाइगर ऑफ बंगाल, कुमार सानू और अलका याग्निक। दरार फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सुनो दरार। और ये उजाला रेडियो है, मैं घड़ी की तरफ देखूं तो 14 मिनट बाकी है 9 बजने में, और जैसे मैंने कहा 9 बजे इश्तिहारे आप सुनेंगे। एन एन है फोर ईमान स्पेशल दी मोर खियार खिस, जो मेरे दिल की बहुत करीब है। और आज मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैंने सोचा कल तो मैं नहीं रहूंगी, तो क्यों ना उनके लिए गीत। मेरे प्यारे सुनो, प्यार में भी बहुत सारी छेड़छाड़ होता है, ये प्लाख मकार तू जाने तो। और इस मामले में एक गीत काफी मशहूर, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, उन दिनों काफी मशहूर थे, और वो गीत मेरी नजर में आई, अभी प्लेलिस्ट में है, और मैंने देखा तो मैंने सोचा अरे ये गीत क्यों ना सुना दूं। दलेजन तत्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी और संगीत की देवी लता जी की आवाजें। कि 18 बरस की तू होने को आई है, कौन पूछेगा जतन कुछ कर ले।

18 बरस की तू होने को आई है, कौन पूछेगा जतन कुछ कर ले। कर ले हमसे मोहब्बत मोहब्बत या ब्यूटीफुल सॉन्ग, छेड़छाड़ सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों। आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ ये खूबसूरत छेड़छाड़ सॉन्ग, लता जी संगीत की देवी और सुरों का बादशाह द लेजेंड पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाजें। फिल्म सुहाग का ये नगमा हमने आप तक पेश किया है। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त धीरे धीरे या धीरे धीरे नहीं, मेरे ख्याल से बहुत रफ्तार से आगे निकल रहे हैं। एक आखिरी गीत इस घंटे का हम आप तक पेश करेंगे और इस गीत के बाद इश्तिहारे होंगे, 9 बजे के इश्तिहारे, और इश्तिहारों के बाद आप सभी के सेवा में खिदमत में हम फिर हाजिर रहेंगे लेकर ये प्रोग्राम दिल की आवाज। आखिरी गीत जो हमने तैयार करके रखा है मेरे प्यारे सुनने वालों, एक रोमांटिक सॉन्ग ये भी है, कवि सॉन्ग राइटर फैज अनवर जी इनके लिखे हुए एक एक अल्फाज एक एक शब्द इनकी कलम से लिखा गया है, एक नगमा जो विपिन सखदेवा अनुराधा पौडवाल जी मिलकर गाएंगे कि पागलपन छा गया और ये दिल तुम पे आ गया, रोका मैंने बहुत पर ये ना माना दिल ही तो है। ये गीत मेरे प्यारे सुनने वालों इतनी खूबसूरत है, आप जिस तरह से प्यार से हम चलाएंगे उतने ही प्यार से अगर आप इस सुनेंगे तो और भी मजा आएंगे। मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू। तू किसी और की हो ना जाना, कुछ भी कर लेगा ये दीवाना। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण की आवाज। और ये फिल्म दर्द का पॉपुलर सॉन्ग है जो आप तक हमने पेश किया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, कल 26 तारीख जून को 31 साल होंगे जबकि मेरी बिटिया रानी अंजलि काजल का जन्मदिन हुआ। और अंजलि अब एक यंग डैम हो गया है। कल उनका जन्मदिन होंगे 100 हजार। और कल तो मैं प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने प्यारे अंजलि के लिए एक गीत मैं चलाऊं। मुझे अपनी बेटियों पर नाज है क्योंकि मेरी बेटियां ना सिर्फ अंजलि लेकिन छाया भी माँ बाप की पहचान है। बेटियों तो क्या कहते हैं, एक शेर ने कहा कि जन्नतें जहां है, बेटियां हर एक माता पिता की मुस्कान है, बेटियां हर एक माता पिता की बस्ती का जान है, बेटियां भगवान का एक वरदान है, और बेटियों से बढ़कर ऐसा कोई शान नहीं है। मेरे ख्याल से हर शान है, और बेटियां नहीं तो जिंदगी माँ बाप की अधूरी, क्योंकि बेटियां से हर कमी हो जाती है पूरी। या एक सौ नीत कुन मेलीफ कुन फोर सेल सुंदर मै डॉक्टर्स, जब से अंजलि पैदा हुए हैं, या इसमें लीफ फरांदर थे, और बेतियां सुख की घनी छाया है, बेतियां दुख में भी माता पिता का सरमाया है, बेतियां से घर में रौनक और हंसी होती है, आती है और होती है। बेटियां ना हो तो खाली जिंदगी है। मेरी बेटियां मेरी आस है, मेरा गुरूर है। मेरी बेटियां से मेरे घर में क्या कहते हैं वो महान कवि, मेरी बेटियों से मेरे घर में नूर है। भगवान इन्हें दुनिया की हर एक खुशी दे, और मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हर एक घर में एक बेटी जरूर जरूर दे दे, क्योंकि बेटी घर का रौनक है। अंजलि अल्फास फन हार्ट फिलिस्टेर मोए फरियाडा मोरख इंग्लिश स्पेशल फॉर अंजलि फन हार्ट एंड लव यू।

पलकों के तले ये जो दीपक है जले, यूं ही जलते रहे सदा है हमारी यही दुआ और प्रार्थना। और राम करे तेरी बगिया में ना आए दुखों की हवा। अंजलि फन हार्ट गेफेलिसिटेर्ड, मोये डाग मोर्गन en dat je heel groot meisje mag worden. Love you. Mere pyare sunolo, Amitabh Bachchan, kaun ise nahi jante? The great Amitabh Bachchan ji, the big B, the angry young man, संगीत की देवी लता जी के साथ एक नगमा मिलकर गाएंगे जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग, सभी सुनने वालों के लिए जो इस वक्त रोमांटिक मूड में है। आप सभी के नाम चलो गीत करते हैं।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये

सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चल के। जावेद अख्तर जी इनके कलम से लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग, संगीत की देवी लता जी और द ग्रेट अमिताभ बच्चन मिलकर गीत गाए हैं, सिलसिला फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनो, ये प्रोग्राम में अभी दर्द भरे नगमा तो पेश नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रोग्राम में दर्द भरे गीत पेश होना भी जरूरी है। उषा दनहाक दंकी वेल आपके अप के लिए। स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं सुतमेर में, दंकी वेल। समझनिया सुशीला चंद्रिका सिंह जी भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं अमस्तलफिन शहर में, और भैया सुनील एतम सदाम दंकी वेल आपके ऐप के लिए। फैमिली बिहारी अद ब्रेदा बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए, और कमला जी अद अमस्तलफिन दंकी वेल फॉर द फेलिसिटेंसिस, और बेहद खुशी है हम कि आप ही चून किए हुए हैं। और देखते हैं अभी व्हाट्सएप पर कौन है। फिलहाल तो आपको ले चलेंगे इंदौर का लिखा हुआ एक नगमा जो मिलकर गीत गाएंगे, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल। कि तुम्हें दिल से चाह था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे, हमें से ये बेरुखी क्यों, सभी दोस्त हैं तुझको प्यारे। ब्यूटीफुल डर्ट भरा गीत मेरे प्यारे सुनो, हीर डर्ट भरे नगमा दिल की आवाज में। एंड इट इज 1:04 फन 3:30, 9:30 बजने में 1 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनो वालों।

दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे, हम से ही ये बेरुखी क्यों, सभी दोस्त हैं तुझको प्यारे। डट भरे गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, इंद्रवर जो एक महान कवि है, सॉन्ग राइटर है, इनकी हाथों से लिखा हुआ ये डट भरे शब्द मिलकर गाए हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद असीज। फिल्म का नाम मीरा का मोहन, मेरे प्यारे सुनने वालों, मीरा का मोहन। प्रणाम से जुड़े हुए हैं और आनंद ले रहे हैं दिल की आवाज और उजाला रेडियो का ये प्रोग्राम, मासलॉइस का सरिता पटन और नरेन दिल से धंक्यूलिवेल चून करने के लिए, और चून किए हैं भी मिका अदनाख, धंक्यूवेल मिका आपके ऐप के लिए, और हूफ डोरप का सांद्रा और सीता भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। धंक्यूलिवेल एंड हाउ हूफ कूल, बहुत गर्मी है और खूबसूरत नगमाओं के साथ आप जरूर से जरूर आनंद ले हियर ऑन योर फेवरेट उजाला रेडियो, और वो भी दिल की आवाज में। बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक को पेश करता हूं मेरे प्यारे सुनने वालों। समीर का लिखा हुआ गीत ये दोनों मिलकर गाएंगे। मन तेरा मेरा मन एक रहे, तेरा मेरा मन

यह ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों। मोहब्बत का मतलब समझने लगा हूँ, मैं दिल बन के तुझ में धड़कने लगा हूँ। मन तेरा मेरा मन एक रहे, तेरा मेरा मन। समीर का लिखा हुआ ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो की खूबसूरत आवाजों में आप तक हमने गीत पेश किया है। फिल्म का नाम आगाज और ये है उजाला रेडियो। मेरे प्यारे सुनने वालों, दिल की आवाज आप सुन रहे हैं। अम्स्टलफीन उकमला दी है पिकल खात। एक मुत एगलिक सेगे हार्लेम इस नी फेर फन अम्स्टलफीन आनेगे तो। आइलीन जी भी प्रोग्राम से जोड़े हुए हैं, थैंक यू वेल आइलीन। एंजॉय दिल की आवाज और आप हमेशा साथ देते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं प्रोग्राम के साथ। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अली जी। मेरे प्यारे सुनो लोग, एक गीत अब की बार दिल की आवाज में पेश करेंगे। कुलवन जानी जी का लिखा हुआ एक नगमा जो मिलकर गाएंगे मोहम्मद रफी साहब जी और सविता सुमन। गीत हमारे फेवरेट सॉन्ग में जरूर गिना जा सकता है क्योंकि हमारे फेवरेट लिस्ट में ये गीत भी शामिल है। व्हाट अ सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग रफी साहब जी और सविता सुमन जी का गाया हुआ कि साथी रे गम नहीं करना, जो भी हो आहे न भरना, जीवन है एक तारा जिसका हर एक सुर बहुत प्यारा। पेश करता हूं

साथी रे गम नहीं करना, जो भी हो आहें न भरना, जीवन है एक तारा जिसका हर सुर प्यारा। फूल की माना उम्र है थोड़ी, जितनी भी महक भरी है, वैसे ही तू हंस के जीले, जीवन तेरा जो बाकी है। हाँ तुम्हें हाथ ले पर हो जीवन धारा। या मोय ओर मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत ही खूबसूरत गीत, मतलब ही सॉन्ग है। कहने का मतलब ये है कि अगर उम्र लंबी या छोटी नहीं, लेकिन जीवन जितनी भी आप जी ले, आप जी जी के मरे, लेकिन मर मर के मत जियो, है ना। एक फूल भी उनका चमक, उनका खिलना, उनका बिखरना, दैट फॉर स्किल है। आप चंद पल में वो हो जाते हैं, मैं वो चंद पल में आप भरपूर एंजॉय करते हैं उस फूल का। इस तरह ये हमारी जिंदगी भी है, किसी की बहुत लंबी है, किसी की बहुत छोटी। प्यार से हम इससे जी ले और एंजॉय करें। कुछ निशानी हम छोड़ जाएं, जिसकी बातें लोग कर सकते हैं हमारे बाद, तू जाने तो। मेरे प्यारे सुनो, ये था कुलवंत जानी का एक नगमा, इन्होंने लिखा है और जो रफी साहब जी और सविता सुमन ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम इकरार। मेरे प्यारे सुनने वालों, एक आखिरी गीत इस घंटे का और उसके बाद ब्रेक होंगे। चलो एक नगमा आपको हम सुनाते हैं, साधना सरगम और द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू की आवाजें। समीर का लिखा हुआ नगमा है फ्रॉम द मूवी सैनिक। ये नगमा टेक्सस यूएस ऑफ ए में भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं अजय और सुनीता। थैंक यू लिवेल इतना दूर, और फिर एक बार आप सभी ने चून किए हुए दार इन टेक्सस। एंजॉय यू आर एंजॉय दिल की आवाज, और दिल से धन्यवाद आप के ऐप के लिए, सुनीता और अजय एंड इधर इन दार इन टेक्सस।

है मुजविर मेरी महबूब की तस्वीर बना, तुझसे बन जाए तो बिगड़ी हुई तकदीर बना। ये डट भर गीत ताजदार ताज जी का लिखा हुआ गीत, द लेजेंड पद्माश्री सुरों का बादशाह रफी साहब जी की आवाज। और ये डट भरा नगमा निकाले हमने मूवी जिसका नाम है इंसान और इंसान। 11 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, वो भी 10 बजकर। आप ही का मन चाट और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे और आप सुन रहे हैं दिल की आवाज। आखिरी घंटे में मान पड़े हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आपका सेवा हम करेंगे रात्रि में 11 बजे तक। और हमने सोचा है क्यों ना इस घंटे में कुछ गाने ऐसे हो जाए, द 80s से 70s, 70s से 60s की ओर हम बढ़ के चले जाए, कुछ मतलब ये कि कुछ पुराने नगमाएं है ना। संतोष आनंद जी का लिखा हुआ गीत, द ग्रेट संतोष आनंद जी, इनका लिखा हुआ एक सुपर डुपर नगमा, डर भरे नगमा में गिना जाता है, लेकिन ये इतने प्यारे शब्द है तो जहां तक मेरा ख्याल है ये प्यार भरे गीत में भी गिना जा सकता है। नितिन मुकेश और संगीत की देवी लता जी की आवाजें। और यहां स्टूडियो के बाहर अब बारिश होने लगा है। ओके, तथा देखनी फरवख्त कसके बारिश होने लगा है यहां स्टूडियो के बाहर रतनाम शहर में। नितिन मुकेश और लता जी

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो, और वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी जिंदगी की ना टूटे लड़ी। मेरे प्यारे सिनेमा पॉपुलर सॉन्ग संतोष आनंद जी, इनके कलम से लिखा हुआ एक एक शब्द खूबसूरत, और मिलकर गाए नितिन मुकेश और संगीत की देवी लता मंगेशकर जी। फिल्म का नाम क्रांति। मेरे प्यारे सिनेमा वालों, क्रांति से हमने नगमा को निकाले। एंसोलूक मेरे प्यारे सुनो लो, इस वक्त का चून किए हुए हैं माय बेस्टीज हमारे सहेलियां क्लास खनोत वारफानिक सोमख केन फनाफ में ट्वीट दाग हीर इन नीदरलैंड शरीदा मासरम रीका मुरादिन en natuurlijk de zusters Ram Kumari Sadhu Autaar en Sandra Autaar ja Sadhu Garbaran Manorma Sila Kalluji have a good one ladies en het was gezellig vorige week vrijdag. Dat moeten we vaker doen, Henna. Ik giet aap sabikelie. En je moet het zo zien, mijn Mukesh hoen. Or aap sabikelie, mijn je giet garaha. Echt waar. In de verkali kahua giet hij je. Mukesh or Kanchenji. En jullie zijn natuurlijk Kanchen, hè. Dankjewel, Sherida, voor je appje. Om te laten weten dat je luistert. Hopelijk geniet je ook een beetje. Peshkartahun nagma, mere pyare sunalo, Indwar kalika hua, Mukeshi or Kanchan.

या खूबसूरत गीत है मेरे प्यारे सुनने वालों, तारीफ करोगी जब तक या कब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, और कब तक रहूंगी मैं तेरे मन में, हाँ मन में सूरज होगा जब तक ये नील गगन में, और खुश होना मुझे तुम पाकर, प्यासे दिल को आज मिला है सागर, क्या दिल में है और तमन्ना, हर जीवन में बस तुम मेरी ही बनना। इतनी प्यार भरे शब्द मेरे प्यारे सुनने वालों, इनवर साहब जी के कलम से लिखा हुआ और अपनी खूबसूरत आवाजों में द हार्ट ऑफ मिलियंस मायती मुकेश जी और स्वर्गीय कंचन जी ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम धर्मात्मा, मेरे प्यारे सुनने वालों धर्मात्मा, किशोर कुमार और संगीत की देवी, पेश करता हूं आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, दोनों मिलकर गाएंगे। दिल से दिल मिलने का कोई तो कारण होगा, नैचुरली रिमेंबर दिस इज यू आर, मेरे प्यारे सुनो वालों, हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए www.pintujala.nl।

दिल से दिल मिलने का कोई तो कारण होगा, बिना कारण कोई बात नहीं होती। वैसे तो हम दोनों एक दूजे से हैं अभी अनजाने, कोई अगर देखे तो कहे बरसों के हैं ये मीत पुराने। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वाला आनंद बख्शी जी, महान कवि जिसके संगीत अमर है, इनका लिखा हुआ नगमा, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और संगीत की देवी लता जी की आवाजें, चरित्रहीन फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, रिमेंबर दिस इज यू आर उज्जला रेडियो, और आप सुन रहे हैं दिल की आवाज। प्रिंसेस राज सुन रहे हैं प्रोग्राम रोतरडम शहर में, और सुन रहे हैं भी प्रोग्राम अमस्टरडम सेंट्रम में प्रभाजी। थैंक यू लिवेल, थैंक यू लिवेल, थैंक यू लिवेल, बहुत बहुत धन्यवाद चून करने के लिए। मेरे प्यारे से लो, 3 मिनट गुजर चुके हैं सरे 10:03 11 हो चला है। आनंद बख्शी जी का एक और नगमा हम पेश करने जा रहे हैं, एक गीत जो काफी मशहूर है, रोमांटिक सॉन्ग है, और क्या गीत इन्होंने लिखा। शुरू का बादशाह द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज। कि तेरे जैसा कौन है, तेरे जैसा कोई नहीं, कैसे कैसे भूल चमन में, लेकिन ऐसा कोई नहीं।

गलियों का जोबन, परियों का रूप, बादल की छांव, सूरज की धूप, शायर की गजलें, शीशे का ए जाम, और दिलकश बहारे रंगीन है शाम। बागों में शबनम मशहूर थी, वादे सभाग थी, मगरूर थी, जब तुझको देखा जाने बहार, कहने लगे सब तौबा है यार। जो तुझको देखे सोचे ये बात, ये जुल्फ है या सावन की रात। जो तुझको पूछे सवाल, तू है हकीकत या है ख्याल। मेरे प्यारे सुनो लो, कैसे कैसे जलवे जहां में, लेकिन फिर भी ऐसा कोई नहीं तेरे जैसा। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग आनंद बख्शी जी, जो महान कवि है, इनके बारे में मैं क्या कहूं मेरे प्यारे सुनने वालों। दिस मैन इज सो क्राउड, उनके आगे हम कुछ भी नहीं। और इनके गाने जो इन्होंने लिखा है हम सभी पसंद करते हैं। आनंद बख्शी जी अमर है और उनका ये संगीत भी अमर है। एन तुगलक मुतोनी फरखीत, गाने वाले सुरों का बादशाह, द लेजेंड, पटमा श्री मोहम्मद रफी साहब जी। फिल्म का नाम तमन्ना, मेरे प्यारे सुनो वालों, तमन्ना। एक और ग्रेट फनकार को पेश करता हूं, इंदवर जी का लिखा हुआ गीत ये गाएंगे। दादा हेमंत कुमार जी को पेश करने जा रहा हूं। व्हाट अ सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, कि तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का ना हो सकेगा, परी हो भला हो क्या हो तुम।

दुनिया चले उधर है जिधर ये निगाहें घूमे, शबनम को देख लो अगर बनकर शराब ये झूमे। हाजी नशा ही नशा हो क्या हो रे तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा इतना खूबसूरत है, मुझे क्या ही कर कितनी तारीफ इस गीत में किए जा रहे हैं कि तुम्हें जो भी देख लेगा किसी और के ना हो सकेगा। परी हो तुम, बला हो, क्या हो तुम, हैरान हो कि आंखों के सामने कौन आ गया। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, द ग्रेट इंदवर साहब जी इनका लिखा हुआ गीत, इनकी हाथों को चूमना चाहिए, इतनी खूबसूरत गीत इन्होंने लिखा। और जिस तरह से और जिस अंदाज से दादा हेमंत कुमार जी ने गीत को गाए हैं, बॉय बॉय, हमारे तो रोंगटे सभी खड़े हो गए थे। दादा हेमंत कुमार जी की आवाज इतनी खूबसूरत है। ये था फिल्म मजबूर का एक नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों। और इतनी गर्मी है और प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, सामने आप हैं, तो फिर आज की ये रात ये कैसी रात होगी। वेल, हमको तो नींद नहीं आएगी। एंद्रू जी, हेर एंद्रू जी और चित्रा जी अटमार सब रुक डांग के लिए, वेल आप कैब के लिए। मेरे प्यारे सुनो, हम दो नगमाएं शैलेंद्र जी का पेश करेंगे। एक गीत का बयां हमने तो कर चुके हैं जो रफी साहब जी और सहरा बानो मिलकर गाएंगे, और आखिरी में शैलेंद्र जी का एक नगमा जो रफी साहब जी गाएंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये फिल्म में सहरा बानो भी है। पहला गीत फ्रॉम द मूवी अमन और आखिरी गीत फ्रॉम द मूवी झूक गया आसमान। मेरे प्यारे सुनवालो, आप सभी से आज्ञा लेंगे, रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर मिलेंगे। एंड अथे साथ रहा स्टैंड, रात्रि में 7 बजे से 12 बजे सेवा में हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। आई लव यू ऑल।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujjala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं Ujjala Radio. और Ujjala Radio साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए. तू जान है तो Ujjala Radio.